Chapa Rosa Amratvele इस वरदान को रिवाइज करेंगे, गिफ्ट को रिवाइज करेंगे, तो बाप दादा यही गिफ्ट दे रहे हैं, एक कदम हिम्मत

0: ऐसे नहीं देखना, देख के बाबा मदद करता है या नहीं, इम्तिहान नहीं लेना। बंधा हुआ है बाप, आप भी बंधे हुए हो, बाप भी बंधा हुआ है। तो इस गिफ्ट को रोज बार बार देखना, कोई बढ़िया गिफ्ट होती है उसको बार बार देखती है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो रोज अमृत वेले देखना और कर्म करते कर्म योगी जीवन में भी बीच बीच में रिवाइज करना। अच्छा, गिफ्ट ले गिफ्ट दी, अच्छा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Yeah.

0: बच्चों से कभी भी दूर नहीं रह सकते। जैसे बच्चे बाप से दूर नहीं रह सकते, तो बाप भी बच्चों से खुश है, मुबारक भी देते हैं कि अभी हर एक समझे कि मैं इस
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा बच्चों को योग में अभ्यास करते हुए देखते हैं। अमृत वेले भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन तपस्या तप के रूप में नहीं करते, प्यार से याद जरूर करते हैं, रोहण भी बहुत करते हैं, शक्ति भी लेने का अभ्यास करते हैं, लेकिन याद को इतना पावरफुल नहीं बनाया। जो संकल्प करो विदाई तो विदाई हो जाए। योग को योग अग्नि के रूप में कार्य में नहीं लगते, इसलिए योग को पावरफुल बनाओ। एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार पसंद करने में आवश्यक, जिस स्वरूप में एकाग्र होने जाओ, जितना समय एकाग्र होने जाओ, ऐसी एकाग्रता संकल्प किया और पसम, इसको कहा जाता है योग अग्नि। समाप्त मारने में फिर भी लाश तो रहते है ना, बस होने के बाद नाम निशान कदम। तो इस वर्ष योग को पावरफुल स्टेज में लाओ, जिस स्वरूप में रहने जाओ मास्टर सर्वशक्तिमान, आर्डर करो समाप्त करने की शक्ति आपके आर्डर से नहीं माने ये हो नहीं सकते।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अभी

0: Charlotte.
1: Yes.

0: जिसे स्थान पर आप संबंध संपर्क में आते हो वो आपके चलन से ऐसे महसूस करते हैं कि ये न्यारे और अलौकिक है कि साधारण समझते हैं ऐसे तो लौकिक भी होते हैं। काम की विशेषता नहीं लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की विशेषता। बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा वकालत करता है, बहुत अच्छा डायरेक्टर है, ये तो बहुत है। एक बुक निकलता है ना जिसमें विशेष आत्माओं का नाम होता है, कितनों का नाम आता है, बहुत होते हैं। इसने ये विशेषता की, ये इसने विशेषता की, नाम आ गए। लेकिन जिन्होंने भी उठाना तो सबको चाहिए, लेकिन जिन्होंने उठाया है और उठाना ही है, तो आपके प्रैक्टिकल चलन में चेंज देंगे। ये अभी आवाज नहीं निकला है, चाहे इंडस्ट्री में चाहे कहाँ भी काम करते हो, एक एक आत्मा कहे कि ये साधारण कर्म करते भी दर्शनीय मुहूर्त है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: दृढ़ता उसको कहा जाता है, मर जाए मिट जाए लेकिन संकल्प न जाए, झुकना पड़े मरना पड़े जीते जी, अपने को मोड़ना पड़े
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Okay.

0: समाचार आते हैं। कई कार्य ऐसे होते हैं, कई प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो विशेष आत्माओं के निमित्त होते हैं। तो बाप दादा के पास, दादियों के पास, क्योंकि साकार में तो दादियां है, बाप दादा के पास तो संकल्प पहुंचते हैं। क्या संकल्प पहुंचता है? मेरा भी नाम इसमें होना चाहिए। मैं क्या कम हूं? मेरा नाम क्यों नहीं? तो बाप कहते हैं, हे अर्जुन, में आपका नाम क्यों नहीं चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सामने वाले बैठे हैं, मारुति बैठे हैं, होना चाहिए ना? होना चाहिए।
1: Eso.

जीवन मुक्त, ब्रह्मांड जीवन मुक्त, साधारण जीवन मुक्त नहीं, ब्रह्मांड श्रेष्ठ जीवन मुक्त।

इसलिए ये बंधन है। समस्या नहीं, समाधान स्वरूप बनना है और साथियों को भी बनाना। क्यों समय की हालत को देख रहे हैं? भ्रष्टाचार का बोर कितना बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार अत्याचार

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कहीं जब कहा थोड़ी बहुत हलचल होती है ना तो घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, गहराई में नहीं जाते, घबरा जाते। अगर गहराई में जाए ना तो कभी भी कितना भी बड़ा हलचल वाला पेपर हो या बात हो, लेकिन गहराई में जाने वाले जैसे समुद्र होता है ना, तो समुद्र के तले में जाने वाले बहुत माल लेके आते हैं। ऊपर ऊपर वाले नहीं, ऊपर वालों को तो मछली मिलेंगी, लेकिन गहराई में जाने वाले बहुत चीजें ले आते। तो यहाँ भी कोई भी बात होवे, बातें तो आएंगी। ये बाप दादा नहीं कहेगा बातें आएंगी नहीं, जितना आगे जाएंगे उतने सुखम बातें आएंगी, क्योंकि पास पिता न रोना है ना। घबराओ नहीं, बाप दादा को उस समय भूल जाते हो, अकेले बन जाते हो ना, तो छोटी बात भी बड़ी बात लगती है। बाप दादा कंबाइंड है, कंबाइंड रखो, अनुभव करो तो देखो बाहर भी रुई बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कितने बारी पास हुए हो, कितने क्लब पास हुए हो पता है, है नशा। अनेक बार मैं ही पास हुआ हूँ, अभी रिपीट करना है, नई बात नहीं है, सिर्फ रिपीट करना है, ये स्मृति रखो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

sapi. Kerasan sekaro. Himmat kabinean. Sad.

कैसे करूं, क्या करूं, नहीं।

Let the ship

सर्वरूप तोरा चेंज कर देते।

Ještě body. Ještě.

Tchau.

अच्छे बनाते हो। बाप दादा जब रोड़ियां सुनते हैं, रोड़ियां बहुत हिम्मत की करते हो। Yes.

ます。

So.

Ramsor Sankalap emerge nahi karo. Smriti rakho. Jay.

Shut up.

siete. Hey. Sí.

0: नहीं कहते बाप दादा है या नहीं है, यही नशा रखो
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आजकल तो मेरे मेरे में एरिया का झमेला ज्यादा हो गया। मेरी एरिया विश्व कल्याणकारी की क्या हद की एरिया होती है, सब छोड़ना पड़ेगा। ये भी देश का अपमान, देश का पान फिर भी हल्की चीज है, लेकिन देश का अपमान ये बहुत सूखम है। मेरा इसको ही देश का अपमान कहा जाता।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जाता है। युक्ति युक्त बोल, साधारण बोल भी Sarva Kasa।

0: trabajar.
1: शक्तिवान है।
0: கோட சம்பன் சிறப்போட சம்பனை Yeah.

0: अच्छे बच्चों से रौनक होती है। तो आपकी रौनक को देख के सभी खुश हो रहे हैं। वाह बच्चे वाह। लेकिन एक बात याद रखना, बच्चे ब्रह्मांड आत्माएं बच्चे, तो जो परों का भाग्य है ना, वो बच्चों का भी भाग्य है। इसलिए बाप के साथ को कभी नहीं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Vishwa.

Nick.

Pozdrav.

Hazırım.

Sick.

Sama.

Bimbo.

सवेरे दौड़ते से

Escúchame.

Thank you.

Some questions.

前。

Sleepy, but

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कोई दुख देवे तो आप क्या करेंगे? दुख देंगे? नहीं देंगे। बहुत दुख देवे तो बहुत गाली देवे, बहुत इंसल्ट करे, थोड़ा तो फील करेंगे या नहीं? डबल नशा है ना, सब बात का
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई भी बंधन में जाना न जाना अनुभव नहीं रहो, जाना है आवश्यक है तो शरीर भी साथ देगा।
2: बहुत लोगों का निमंत्रण होता है पीछे, तो सब कहेंगे यहाँ आया यहाँ नहीं आया।
1: नहीं, उसमें भी जब देखो हो सकता है तो ना नहीं करो, चल सकता है शरीर। कभी तो एकदम खराब होता है ना, वो बात दूसरी है, बाकी चल सकता है तो सेवा से खुशी होती। ये भी दवाई है, कितने खुश होते हैं तो सबकी खुशी की खुराक मिलती है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Sudden. किसका है? रावण का। तो मेरा क्यों का? ये तो कभी नहीं कहते हो कि ये रावण के संस्कार है। कहते हो मेरे संस्कार। Yeah, he died.

0: dich bei dir. Mira Sanskar.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आपके निमित निर्माण भाव और शुभ भावना वायुमंडल ऐसा बनेंगे जो से बदल जाए। कई बच्चे रोरियान करते हैं ना, तो कहते हैं हमने एक मास से शुभ भावना रखी, वो बदलता ही नहीं है। फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं। अभी उस बेचारे की जो वृत्ति है या दृष्टि है वो पक्के पत्थर जैसी है, उसमें थोड़ा तो टाइम लगेगा। अच्छा मानो वो नहीं बदलता है, लेकिन आप तो अपने पोजिशन में रहो ना, दिल शिकस्त नहीं हो। अच्छा वो नहीं बदला तो मैं तो नहीं बदल जाऊं उसके साथ। दिल शिकस्त हो जाना तो वो पावरफुल हुआ जो आपको तो बदल लिया। आप अपने स्वमान की फॉलो करके वाइब्रेशन देते रहो। अभी कोई नरम चीज होंगे, कोई सख्त चीज होंगे।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: देखो बाप दादा, मैं चैरिटी शब्द कह रहा है, सर्व नहीं कह रहा है, मैं चैरिटी कह रहा है। दूसरी बात क्या देखी, क्यों का कारण को निवारण करेंगे तब नवनिर्माण होगा। दूसरा कारण ये दिखा कि अलबेलापन भिन्न भिन्न रूप में दिखा, कोई बहुत रैल रूप का भी अलबेला बन दे। एक शब्द अलबेलेपन का कारण सब चलता है, क्योंकि साकार में तो हर एक के हर अरब को कोई देख नहीं सकते। साकार ब्रह्मा भी साकार में नहीं देख सके, लेकिन अब अव्यक्त रूप में अगर चाहे तो किसी के भी हर कर्म को देख सकते, जो गया हुआ है कि परमात्मा की हजार आंखें लाखों आंखें है, लाखों कान है, वो अभी निराकार और अव्यक्त ब्रह्मा साथ साथ देख सकती है, कितना भी कोई छिपाए, छिपाते भी रॉयल्टी से है, साधारण नहीं। तो अलबेलापन एक मोटा रूप है, एक महीन रूप है, शब्द दोनों में एक ही है, सब चलता है। देख लिया है क्या होता है, कुछ नहीं होता, अभी तो चल लो फिर देखा जाएगा। ये अलबेलेपन के संकल्प बाप दादा चाहे तो सभी को सुना भी सकते हैं। देखना आप लोग कहते हो ना, थोड़ी लाजपत रख दो, तो बाप दादा भी लाजपत रखते, लेकिन ये अलबेलापन पुरुषार्थ को दीवार नहीं बना सकता, पास विद ऑनर नहीं बना सकता। जैसे स्वयं सोचते हैं ना सब चलता है, तो रिजल्ट में भी चल जाएंगे, लेकिन उड़ेंगे नहीं। तो सुना क्या दो बातें देखी, परिवर्तन में अगर ये अलबेलापन है किसी भी रूप से है, हर एक के अलग अलग रूप, लेकिन उस समय मुस्कुराती है, कहती है देख लेंगे क्या होता है। तो बाप दादा भी कहते हैं देख लेना क्या होता है। गाना आज क्यों सुना रही है, क्योंकि चाहो नहीं चाहो जबरदस्ती भी आपको बनाना तो है, और आपको बनना तो पड़ेगा ही। आज थोड़ा सख्त सुना दिए, क्योंकि आप लोग प्लान बना रहे हो, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन कारण का निवारण नहीं होगा तो टेम्पररी हो जाएगा, फिर कोई बात आएंगे ना कहेंगे बात ही ऐसी थी ना, कारण ही ऐसा था, मेरा हिसाब किताब ही ऐसा है। इसलिए बनना ही पड़ेगा, मंजूर है ना।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सर्व ज्ञान से जाना, लेकिन दिल के प्यार का अनुभव नहीं किया, प्यार से पाप को याद नहीं किया, तो प्रैक्टिकल फल नहीं निकलता, अर्थात अनुभव नहीं होता। अनुभवी स्वरूप है फल, लेकिन पानी नहीं देते तो सूखा करना हो जाता। भले कोर्स कराओ, भाषण करके आओ और इनाम भी लेके आओ, दिन में चार चार भाषण करो, लेकिन दिल का स्नेह नहीं। क्योंकि पाप से दिल का स्नेह की निशानी है हर ब्राह्मण परिवार से भी स्नेह। स्नेह नहीं तो माया के विघ्न ज्यादा आते, क्योंकि प्रत्यक्ष फल पानी डाला ही नहीं तो फल कैसे मिलेंगे। कई बच्चे कहते हैं ज्ञान तो समझ गए हैं बाबा से, सर्व संबंध भी है, लेकिन अनुभव नहीं होता। अनुभव है फल। सूखा ज्ञानी नहीं बनो, सनेही पाप का, सनेही परिवार का, सनेही सुतई बन जाता। क्योंकि बाप समान है ना, तो बाप का लास्ट बच्चे से भी दिल का प्यार हर एक को स्नेह के वृत्ति से देखते। तो सिर्फ ज्ञानी नहीं बनो, भाषण वाले नहीं, बस नया स्वरूप। इस वर्ष क्या करेंगे, सने का वायुमंडल एक एक को देख के, चाहे कमजोर है लेकिन पुरुषार्थी तो है ना। परिवार का तो है, गिरे हुए को गिराओ नहीं। ओ मां को उत्साह बढ़ाओ,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ऐसे वो माइक वाला जिसके आवाज पे ताकत हो, माइक उसको कहा जाता है। चाहे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन आवाज पे ताकत नहीं तो माइक नहीं। माइक वो जिसके आवाज पे ताकत हो, ऐसा माइक तैयार करो किसे मेरी
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा यही चाहते हैं कि ये पूरा वर्ष चाहे सीजन 6 मास चलती है, लेकिन पूरा ही वर्ष सभी को जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, चाहे आपस संतुष्ट रहो और दूसरे को भी संतुष्ट करो। इस सीजन का स्वमान है संतुष्ट मणि, सदा संतुष्ट मणि। भाई भी

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी आप सभी भी अपना चित्र खींचो, आता है चित्र खींचने, आता है ना? श्रेष्ठ संग

अपना चित्त

सभी ड्रिल करो, माइंड ड्रिल, घर में इंद्रियों की ड्रिल नहीं, मन की ड्रिल करो। रेडी, ड्रिल करने के लिए रेडी है, कांधे लाओ। Sabi.

चित्र ने

शरीरचना श्रेष्ठा।

रचना इस वृक्ष के जड़ में बैठी हुई पूर्वज और पूजा

Efe Carpaccia.

See.

0: शिवा आत्मा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जाओ

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: संकल्प करते हो लेकिन बाद में क्या होता है? संकल्प क्यों कमजोर हो जाती है जब चाहते भी हो? क्योंकि बाप से प्यार बहुत है, बाप भी जानते हैं कि बाप दादा से सभी बच्चों का दिल से प्यार है, और प्यार में सभी हाथ उठाते हैं कि 100% तो क्या, लेकिन 100% से भी ज्यादा है, और बाप भी मानते हैं प्यार में सब पास है, लेकिन क्या है, लेकिन है कि नहीं है? लेकिन आते हैं कि नहीं आते? आते हैं लेकिन मानो बीच बीच में लेकिन आ जाते हैं, आ जाते हैं, ना नहीं करते हैं तो हाँ है। बाप दादा ने एक बात नोट की है, मेजॉरिटी प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण है, एक ही शब्द है, सोचो वो एक शब्द क्या है? एक शब्द क्या है? बोलो टीचर्स, क्या है? पांडव बोलो, क्या है? एक शब्द है, आ गया, याद तो आ गया ना? याद आ गया? अच्छा, एक शब्द है मैं अपमान के रूप में भी मैं आते हैं, और कमजोर करने में भी मैं आते हैं। मैंने जो किया, मैंने जो समझा, वो ही राइट है, वो ही होना चाहिए, और जब होता नहीं है ये अपमान, अपमान का मैं जब पूरा नहीं होता है तो फिर दिल शिकस्त में भी आता है। मैं कर नहीं सकता, चल नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। एक बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं बदल जाए, स्वमान भी याद दिलाते हैं, और मैं देहमान में भी लाता, मैं दिल शिकस्त भी करता है, और मैं दिल खुश भी करता है। निशानी जानते हो क्या होती है? कभी भी किसी में भी अगर बॉडी कॉन्शियस का अपमान अंश मात्र भी है, उसकी निशानी क्या होगी? वो अपमान अपना सहन नहीं कर सकेगा। अपमान अपमान सहन नहीं करे। शराबी कोई कहेगा ना, ये ठीक नहीं है, थोड़ा निर्वाण बन जाओ, तो अपमान लगेगा। ये अपमान की निशानी।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: शिवा के अति में नहीं जाओ, बस मेरी कोई कहानी है, मैं ही कर सकती हूँ।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने देखा है कई बच्चे माया को दूर से भगाते नहीं, माया आ जाती

अगर दूर से नहीं भगाते तो माया की भी आदत पड़ जाती है, क्योंकि वो जान जाती है कि यहां हमको बैठने देंगे करने लग जाती है।

Jacoby, che saluto.

आश्रत नंबर वाले बच्चे को भी सदा गुलाब देखने चाहते, गिरा हुआ मुरझाया

Yeah.

Isso me

Es ist so mecki.

Ekkert er sann.

Y aquí es que para más.

0: संकल्प के कर तो दृढ़ संकल्प क्या नहीं कर सकता। ये तो एग्जाम्पल है आपके आगे, उसमें दृढ़ता कम होती। कोई बात आई ना सामने तो दृढ़ता कम हो जाती। दृढ़ता सफलता की चाबी।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कल से नहीं, आज से, अभी से, सारे दिन में दोनों बाप से प्यार, तो कभी
2: से

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा अगर बच्चे को देवर पुरुषार्थ be

del Quito a Elena. Rosa Bradwelle. Apaneco. Papito a Yeah.

course.

0: cielo और उड़ाते
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश करना ये भी अपने को धोखा देना है। बाप दादा देखते हैं, कभी कभी बच्चे अपने को result निकली, लेकिन एक्स्ट्रा में भी फाउंडेशन पवित्रता स्वच्छ हो, साफ हो और कोई भी भाव मिक्स में भी पवित्रता, भावना में भी पवित्रता।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: I'm sick.

क्या ये संकल्प ब्रह्मा बाप का है? अगर है तो प्रैक्टिकल करो, घर के पीछे नहीं सोचो।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Satan. संतुष्ट रहने वाली संतुष्ट बाणियों को

संतुष्ट मणि की चमक से चारों ओर कितनी सुंदर चमक

サンとしちゃった。

you, Monday.

加森。

そっとして。

कितनी भी परिस्थिति सामने आए, लेकिन संतुष्ट मणि के आगे हर Yeah.

钱。Estética.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: हाथ उठाने में तो होशियार नहीं, बाप दादा खुश खुश हिम्मत तो रखी ना, तो हिम्मत है बच्चे की बातें सोचते हैं, लेकिन

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा को हर बच्चा दिल का दुलार है, चाहे नंबर वन नहीं है, लेकिन नंबर वार है तो भी बाप दादा का हर कलब का सिक्की लता बचे। इसलिए अपने सिक्की लते सदा याद रखो। छोटी सी बात है, सिर्फ कोई भी मुश्किल आवे दिल से ऑर्डर करो, मेरा बाबा बाप अवश्य सहयोग नहीं दे। दिल साफ मुराद हासिल, किचरे वाले दिल में बाप नहीं आता। और समय से याद करो, सिर्फ ज्ञान के आधार से याद नहीं करो। सुनाया था ज्ञान है बीज और स्नेह है पानी। सिर्फ ज्ञान से जाना, लेकिन दिल के प्यार का अनुभव नहीं किया। प्यार से बाप को याद नहीं किया तो कल फल नहीं निकलता, अर्थात अनुभव नहीं होता। अनुभवी स्वरूप है फल, लेकिन पानी नहीं देते तो सूखा करना हो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अगर कोई नैन अंदर में समझे, हाथ उठाने में शर्म आवे, तो भी
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज का विशेष वरदान क्या याद रखेंगे? सहज पुरुषार्थ, सहज कार्य जल्दी जल्दी किया ही जाता है, मेहनत का काम मुश्किल होता है ना तो टाइम लगता है। तो कौन हो सभी सहज पुरुषार्थ बोलो। याद रखना, अपने देश में जाके मेहनत
2: Yes.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

어쩌고 밥다다 나의 브라만 머리와 맨 아내기 못 아픈 애달 없애 얼 브라만 머리와

0: que acártense. Chao. The last so fast fast so
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

而死者楼。Exercise, girl.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सब ठीक, आराम से रहे हुए हो? मन भी आराम में, धन भी आराम में, दोनों ही आराम है ना? सीरियस नहीं रहो। अब तो सब मिल गया, बाकी क्या चाहिए? नाचो गाओ।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

अशुद्ध संकल्प कम चलते, लेकिन व्यर्थ संकल्प आते जाते। तो इस एक जन्म के मूल्य के अनुसार संकल्प अभी फिनिश होने चाहिए। क्योंकि संगम युग के महत्व के हिसाब से एक

0: ese. Esto no va a tocar. Atención.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Yet.

Shit.

行。

than me.

विश्वसेवको सारा दिन वाणी द्वारा जैसे सेवा के निमित्त बनते हो, ऐसे ही बीच बीच में मनसा सेवा भी

Sunday.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Extra.

0: कोई कुछ भी देवे, बददुआ भी मिलेंगी, क्रोध की बातें भी आएंगी, क्योंकि वायदा करेंगे ना तो माया भी सुन रही है कि ये वायदा करेंगे।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आप तो विश्व के परिवर्तक हो, विश्व कल्याणकारी हो, इसलिए बाप यही चाहते कि चलते फिरते राजा पर नहीं भूलो, सीट को नहीं छोड़ो, बिना सीट के कोई आर्डर नहीं मानते। आजकल देखो सीट के पीछे कितना कितना कुछ करते हैं, अपना हक लेने के लिए कितना प्रयत्न करते, अपना हक कोई छोड़े नहीं चाहता। आप अपना परमात्म हक, मैं कौन, हर समय जो काम करते हो
3: रखना है। बहुत माला है सोमान।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जिसको भी जो देखे ना, ऐसे लगे ये कौन मेरे सामने आ गए। देख देख के खुश होता रहे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: हर पल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ, हर संकल्प में पवित्रता का मैं तो, हर कर्म में कर्म और योग अर्थात कर्म योगी का अनुभव, इसको कहा जाता है ब्रह्माचारी।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: हमेश रात्रि को बाप दादा को सामने रख ये भर्ज कर अपने रिजल्ट उठा के बाप दादा को खुश कर दे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अचानक

इसलिए अभी बाप दादा हर बच्चे को एक स्वभाव देते हैं। हर बच्चा

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Say pop.

अपना द्वारा बाप द्वारा प्राप्त हुए किरणों द्वारा सहारा बनो सहयोग देते हैं तो नाम ही है सहयोग। श्रेष्ठ योग वही साधन है सहारे देने का। संदेश भी भेजा था कि समय फिक्स करो, ऐसे नहीं हो जाएगा जैसे ट्रैफिक कंट्रोल अमृत वेला निश्चित है तो करते हो ना। ऐसे अपने कार्य परमान ये मनसा सेवा भी अभी के समय परमान आवश्यक है। तो समय निकालो रैम दिल बनो कल्याण गाड़ी बनो स्वमान के विश्वास।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अगर पापा शब्द नहीं निकलता तो ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ब्यूटी को रॉयलिटी, पर्सनालिटी, रियलिटी, रॉयलिटी के साथ अपने देश में विशेष आत्माएं हो, जैसे आकाश में विशेष सितारे चमकते हैं, ऐसे आप अनादि रूप में विशेष सितारा चमकते हो। तो अपना आदिकाल की रॉयलिटी याद करो, फिर सतयुग में जब आते हैं तो देवता रूप रॉयलिटी याद करो। सभी के सिर पर रॉयलिटी का लाइट का ताज, अनादि आदि और किसकी नहीं है। नेताओं का, अभिनेताओं का, धर्मात्माओं का चित्र बनते हैं, लेकिन आपके चित्रों की पूजा विशेषता कितनी रायल है। चित्र को देख करके ही सब खुश हो जाते, चित्रों द्वारा भी सब रॉयलिटी।

जन्म से तत्काल पवित्रता की कमी समाप्त होना चाहिए। ऐसे नहीं हो जाएगा, उस समय वैराग्य आ जाएगा तो हो जाएगा। बातें बहुत अच्छी अच्छी सुनाते बाबा, आप फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। लेकिन बाप दादा इस जनवरी मास को स्पेशल

പവിത്രത്താശ്രം ബ്രഹ്മചര്യനെ.

0: आप जैसे पवित्रता जो रिजल्ट में आत्मा भी पवित्र शरीर भी पवित्र डबल पवित्रता प्राप्त।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Ready?

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा तो कहते ही है कि सब अचानक होना है। कोई बच्चे समझते हैं अचानक अचानक भी बहुत समय हो गए, अभी होना चाहिए। लेकिन अचानक तब हो जब बच्चे भी बाप समान बन जाए। आपकी सूरत मूरत एक एक बॉल बाप को प्रत्यक्ष कर हो जाना तो है, वो नहीं है अभी सिर्फ निमित्त बनना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने एक बारी सभी सेंटर्स का चक्कर लगाया, पता है क्या देखा? कमी किस बात की है तो यही दिखाई दिया कि एक सेकंड में परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाना इसकी कमी है। जब

दूसरों की बातें याद करते, ये क्यों होता, ये क्या होता, इसमें आश्चर्य की मात्रा लगा जाती, तो फुल स्टॉप नहीं लगता। लेकिन कमा आश्चर्य आश्चर्य की निशानी, और क्यों क्वेश्चन कि क्यों लग जाती। तो इसको चेक करना, अगर फुल स्टॉप लगाने की आदत नहीं होगी is

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सभी कहते तो है मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, जब दिल से

मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। दूसरा महीन मैं, जो सुनाया मैंने ये किया, मैं ये कर सकता, अपमान इस रूप में आता है। तो आज बाप दादा ने ये महीन में जो कभी इसको समाप्त करना, देखो यादगार जो बनाती है उसमें भी जब बलि चढ़ाती है तो खुद नहीं बक बलि चढ़ते हैं, लेकिन किसको बलि चढ़ाते हैं? बकरे को। बकरे को क्यों ढूंढा? क्योंकि बकरा मैं ही करता है। भक्तों ने काफी तो बहुत अच्छी

0: entra. To babko orso gat nejde.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ब्रह्मा बाप के लिए भी सोचते हैं। ब्रह्मा बाबा में तो शिव बाबा था, शिव बाप के लिए भी सोचते हैं कि वो तो है ही निराकार, न्यारा और निराकार। हम तो
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जो कार्य आरंभ करते हैं उसमें पहले दृढ़ संकल्प का बीज डालो, उसका
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कुछ भी सेवा करो, चाहे जिज्ञासु कोर्स वाले आवे या नहीं आवे, लेकिन स्वयं से संतुष्ट रहो, निश्चय रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूं तो आज नहीं तो कल ये मैसेज काम करेगा, करना ही। हिसाब किताब में जमाओ और उन्हों को भी संदेश मिल गया तो टाइम सभी को आना ही है, इसलिए करते जाओ। खर्चा बहुत हुआ उसको नहीं सोचो, अगर स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हुआ। घबराओ नहीं, पता नहीं क्या हुआ, कई बच्चे ऐसे होते कहते हैं मेरा योग ठीक नहीं था तभी ये हुआ, किसे योग था और कोई है क्या जिसे योग है और सदा रहेगा। बाकी कोई सीजन का फल है, कोई हर समय का फल है, तो अगर कोई आया नहीं तो सीजन का फल है, सीजन आएंगे। दिल शिकस्त नहीं हो, योग श्रीमत को तो मानना है, श्रीमत परमान कार्य किया, इसीलिए श्रीमत को मानना ये भी एक सफलता है। पढ़ते जाओ करते जाओ और ये पश्चाताप करके आपके पाँव पर पड़ी, आपने कहा हमने नहीं माना, यही आप दिव्या बनेंगे।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ब्रह्मा बाप को देगा कैसा भी बच्चा हो, शिक्षा दातापन शिक्षा भी देते, लेकिन शिक्षा के साथ प्यार भी दिल में रखते, और प्यार की निशानी है कोई पांव का प्यार नहीं, लेकिन प्यार की निशानी है हर आत्मा के वृत्त कैसी भी है, कोई भी है, लेकिन अपने शुभ भावना से शुभ कामना से कैसी भी माया के वश आत्मा को परिवर्तन करना, करना भाव नहीं आवे ये तो बदलने वाले नहीं, ये तो है ही ऐसे नहीं। सुनाया ना अभी आवश्यकता है रहम दिल बनने की, क्योंकि कई बच्चे कमजोर होने के कारण अपने शक्ति से कोई बड़ी समस्या से पार नहीं हो सकते, तो आप सहयोगी बनो, किसे सिर्फ शिक्षा से नहीं, आजकल शिक्षा सिवाय प्यार या शुभावना के कोई नहीं सुन सकता, ये तो फाइनल रिजल्ट है। शिक्षा काम नहीं करती, लेकिन शिक्षा के साथ शुभ भावना रहम दिल ये सहज काम करता है। ब्रह्मा बाप को देखा मालूम भी होता कि आज इस बच्चे ने भूल की है, मालूम है, लेकिन उसी बच्चे को शिक्षा भी तरीके से युक्ति से देगा, लेकिन फिर उसको बहुत प्यार भी करेगा, जिससे वो समझ जाते थे तो पापा का प्यार है, और प्यार में गलती महसूस था कि शक्ति उसमें आ जाती।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: खुशी में नाचते भी रहता और दिल खुश मिठाई बांटते भी रहना, साथ में जो भी सम्मान संपर्क में आए उसको कोई न कोई गिफ्ट देना, कोई हाथ खाली नहीं जाए। कौन सी गिफ्ट देंगे? आपके पास गिफ्ट तो बहुत है, गिफ्ट स्टॉक है। तो देने में कंजूस नहीं बनना, देते जा फ्राक दिल बनना, किसी को शक्ति का सहयोग दो, शक्ति का वाइब्रेशन दो, किसको कोई कौन का गिफ्ट दो, मुकद से नहीं अपने चेहरे और चलन से। और किसको चलो कोई गुण इमर्ज नहीं भी हो, शक्ति इमर्ज नहीं भी हो, तो कम से कम छोटी सी सौगात भी देना। वो कौन सी शुभ भावना और शुभ कामना है? शुभ कामना करो कि ये मेरा अवश्य में हाथ से किसको देंगे नहीं, लेकिन सदा आपके राज में हर आत्मा भरपूर रहेगी।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: देखो, निश्चय का पर्तक्य परवान है, रूहानी नशा
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा को किसी भी बच्चे की मेहनत की स्थिति अच्छी नहीं लगती।
4: जिम्मेवारी बाप को दे दो।

Joker.

0: ese mocho cayuque. Ese mocho que yo comí vi. Mocho no hay manangue.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Vale.

वेस्ट संकल्प की तरफ ले जाता। तो लगाम को टाइट करने से अपने को फेरत संकल्प की मन के मालिक बन जैसे

संकल्प कब है, फिर रत जाता।

0: sempre si incano. Ciò ordina a crescendo.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: टीचर को क्या चाहिए? सेंट्रल अच्छा हो, कपड़े भले कैसे भी हो, लेकिन सेंट्रल थोड़ा रहने लायक तो अच्छा। और जो साथी है वो अच्छे हो, स्टूडेंट अच्छे हो, पापा की पंडाली अच्छी हो, अगर अच्छा स्टूडेंट चेंज हो जाए तो दिल रखती है थोड़ी। फिर समझती है कि क्या करें, ये मदद करता ना, अभी वो चला गया, मदद कर चिंगिया सूता वहाँ पाप है। तो उस समय कौन दिखाई देते चिंगिया सूया पाप? तो ये रायल माया ये फाउंडेशन को हिलाने की कोशिश करती। अगर आपको निश्चय है सर्वशक्तिवान साथ है, विनाश हो जाएगा। क्या विनाश तक भी हमारा नंबर नहीं है? नंबर तो आना चाहिए, लेकिन पहले भी बाप दादा ने सुना कि अगर स्टेज पर नंबर आ गया, योग्य है

Yeah.

0: रोज़ ही देखते रहेंगे कि फलानी जगह हुआ मेरे को फिर भी नहीं मिला। अभी देखो परसों यहाँ हुआ, कल वहाँ हुआ, आज यहाँ हुआ, तो योग लगेगा या गिनती होती रहेंगी। तो मुख्य बात है यथारत निश्चय उसको पका करो। कहने में तो कह देती हूँ मैं आत्मा, और पाप सर्वशक्तिवान है, लेकिन
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: औरों को शक्ति देने के लिए चाहिए।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा सभी बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ की विधि सुना रहे। माताओं को सहज चाहिए ना बाप दादा, यही सब माताओं को बच्चों को कहते हैं। सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है सिर्फ चलते फिरते संबंध संपर्क में आते हर एक आत्मा को दिल से शुभ भावना की दुआएं दो और दूसरों से भी दुआएं लो। चाहे आपको कोई कुछ भी दे, बद दुआ भी दे, लेकिन आप उस बद दुआ को भी अपने शुभ

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

Thank you.

मेरे में खुशी होने चाहिए, किसी न किसी प्रकार की थकावट कोई न कोई बात का अलबेलापन।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

you're funny.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Oh yeah।

तो ऐसा कोई दर्पण है ही नहीं जिसमें परमात्मा दिखाई दे। तो आप इस नए वर्ष की ऐसी गिफ्ट दो जो विचित्रता

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

कोई ना कोई

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Sad.

Peace.

Чарат кит на сети.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अच्छा, ड्रिल तो याद है ना, भूल तो नहीं गए। क्यों को बाप दादा जानते हैं, आगे का समय अति हाकार का होगा। आप सबको देनी पड़ेगी, और सकाश देने में आपका अपना दीवार पुरुषार्थ हो जाएगा। थोड़े समय जो ऐसे नाजुक समय में सकाश देंगे, जितनों को देंगे, चाहे बहुतों को चाहे थोड़ों को, उतने ही द्वापर और कलयुग के भगत संगम पर हर एक भगत भी बना रहे। योग दिया हुआ सुख और शांति उनके दिल में समा जाएगा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

好き。

Sim.

0: रहेगा तो नाम रूप खत्म।
1: सुनते रहे।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बच्चों

Sua mãe, sua

स्वमान कितना बड़ा है। चले गए अनादि स्वरूप में।

जैसे आकाश में भी यहाँ कोई कोई सितारा विशेष चमकता है।

उस

again.

تصرف دیکھو.

Nej, sån där.

Isso.

think?

Peace.

con sa yukage.

अपने पूज स्वरूप को देख रहे हो।

चाहे गुरु बने।

चक्कर लगा रही हूँ, हाथ उठाओ जा। देखो अपना स्वमान, क्योंकि स्वराज अधिकारी

with me. Salam alaikum.

इसलिए

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सेवा तो करी, लेकिन अगर सेवा करने के समय व सेवा के बाद स्वयं अपने मन में अपने से संतुष्ट है और साथ
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: किसी भी साधन से उनको संदेश जरूर पहुंचा। वो आप आपस में रहकर तीन चार तरीके बनाओ, फर्क वाले भी अपने सभी कनेक्शन वालों को शिवरात्रि के महत्व का संदेश जरूर दे। पसंद है आज?
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Loki.

alors que

स्मृति में चलते हैं। Oh.

0: दिवस मनाते।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: हाथ इसीलिए उठाते हैं, अभी जैसे एक तो को देख करके हाथ उठाने में उमंग आता है ना। ऐसे जब भी कोई समस्या आवे तो सामने बाप दादा को देखना, दिल से कहना बाबा, और बाबा हासिल हो जाएगा, समस्या खत्म। समस्या सामने से हट जाएगी और बाप दादा सामने हाजिर हो जाए। मास्टर सर्वशक्तिवान अपना टाइटल हर समय याद करो, मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो मास्टर सर्वशक्ति क्या नहीं कर सकते है, सिर्फ अपना टाइटल और कर्तव्य याद रखो। टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान और कर्तव्य विश्व कल्याणकारी। तो सदा अपना टाइटल और कर्तव्य याद करने से शक्तियां इमर्ज हो जाएंगी। मास्टर बनो, शक्तियों के भी मास्टर बनो। आर्डर करो, हर शक्ति को समय पर आर्डर करो। वैसे शक्तियां धारण करते भी हो, है भी, लेकिन सिर्फ कमी ये हो जाती है कि समय पर यूज नहीं करने आते। समय बीतने के बाद याद आता है, ऐसे करते तो बहुत अच्छा होता। अब अभ्यास करो, जो शक्तियां समाई हुई है उसको समय पर यूज करो। जैसे इस कर्म इंद्रियों को आर्डर से चलाते हो ना, हाथ को पांव को चलाते हो ना, ऐसे हर शक्ति को आर्डर से चलाओ, कार्य में लगाओ। आके रखते हो, कार्य में कम लगाते हो। समय पर कार्य में लगाने से शक्ति अपना कार्य जरूर करे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा तो आज हर बच्चे को देख यही वरदान

0: अचानक समाप्त होना है। एक समय दूसरा संकल्प दोनों की हर घड़ी अटेंशन।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सिक्किया बहुत नहीं दो कि मैं करूं, सिक्किया देने में एक दो को भी समोचा रहे, लेकिन कि मैं के साथ सिक्किया दो। मोरली सुनाने कोर्स सिक्किया नहीं दो, रैम दिल बन के सिक्किया।

0: sakam keringa jo tusreka kab sori ki kimya ho jayegi samjha.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कई बच्चे कहते हैं हम तो बहुत सेवा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन प्राप्ति नहीं होती। उसका कारण वरदान सबको एक है कि दूसरा दूसरा एक ही है ना। 60 साल वालों को भी एक, तो 1 मास वाले को भी एक। खजाने सभी को एक जैसे पालना, सबको एक जैसे दिनचर्या मर्यादाएं सबको एक जैसे। दूसरी दूसरी तो नहीं है ना, ऐसे तो नहीं choose।

थोड़ा टाइम दिमाग में याद रहेगा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी

见。Deep.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

Cucciolo.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: देंगे

0: ये वाह शब्द भूलना नहीं, वाह वाह।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: बढ़ो और आगे बढ़ाते चलो। एक दो के साथ ही है ना, तो साथ देना अर्थात आगे बढ़ा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Jetty.

0: आजकल किसी को भी कोई टाइटल मिलता है तो वो भी अपना भाग्य समझते हैं, लेकिन आप बच्चों को
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

संभाल के रख। जब लेने वाला ले रहा है तो बोझ देने में भी सोचने की बात है क्या? कितने सर जन्म की आदत है बोझ संभालने की। बच्चे कभी कभी कहते हैं चाहते नहीं है लेकिन आदत से मजबूर है। अभी तो मजबूर नहीं होना, मजबूर हो कि मजबूत हो। मजबूर कभी नहीं बनना, मजबूत है। शक्तियां मजबूत हो या मजबूर, मजबूत है ना। आगे बैठी हुई क्या है? मजबूत है ना। Oh.

Ocean. Как курс. Абитура.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सेवा के साथी पाप तो सकाश देने वाले हैं, लेकिन साथी कौन? साकार का साथ तो परिवार का है। तो पाप ने देखा है कि तीन निश्चय में मेजॉरिटी ठीक चल रही है, लेकिन परिवार के साथ में निभाना, संस्कार मिलाना, एक एक को कल्याण के भावना से देखना और चलना, इसमें कई बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। लेकिन बाप ने देखा कि जो परिवार के निश्चय में नॉलेजफुल होगे, सदा बाप समान साखी बन के स्थिति में साथ में आते हैं, रहते हैं। वही नंबर वन या नंबर वन डिवीजन में आता है। तो चेक करो भाव स्वभाव परिवार में होते हैं। जो भी छोटी छोटी गलतियां होती है, विघ्न आते हैं, वो परिवार के संबंध में ही आते हैं। तो सबसे आवश्यक इस परिवार के संबंध में पास होना आवश्यक है। अगर परिवार में चलने में, तोड़ने बहाने में कोई भी कमी होती है, तो वो विघ्न छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन तंग करता है। ये क्यों, ये कैसे परिवार के कनेक्शन में आता है? तो क्यों के बजाय क्यों नहीं करना है, लेकिन हमें मिलकर चलना है, परिवार की प्रीत निभानी। क्यों कि ये बाप का परिवार है, भगवान का परिवार, रवासी परिवार नहीं। नशा रहना चाहिए कि वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मैं और वाह परिवार।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सबके दिल पे कौन क्या कहेंगे, मेरा बाबा

मेरे बाबा मेरे बाबा हर एक बच्चे के मन से देखो तू कौन समाया हुआ है दिल में मेरा बाबा हरे के

0: हरेक बच्चा दिल से मेरा बाबा कहते हुए ऐसे समाया जाता है जो बाबर मिलन का चित्र सदा के लिए हर एक के दिल में छिप जाता है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
2: जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे, धरती गगन हो मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही कथन।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने सहज विधि सुनाई है कि निरंतर याद के लिए एक विधि बनाओ, सारे दिन में दो शब्द सभी बोलते हो और अनेक बार बोलते हो, वो दो शब्द है मैं और मेरा। तो जब मैं शब्द बोलते हो तो बाप ने परिचय दे दिया है कि मैं आत्मा हूं। तो जब भी मैं शब्द बोलते हो तो ये याद करो कि मैं साथ में सोचो, क्योंकि आप तो जानते हो ना कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, परमात्म पालना के अंदर रहने वाली आत्मा हूं। और जब मेरा शब्द बोलते हो मेरा कौन, मेरा बाबा अर्थात बाप परमात्मा। तो जब भी मैं और मेरा शब्द कहते हो उस समय ये एडिशन करो, क्योंकि मेरा कभी भूलता नहीं है। सारे दिन में देखो मेरा ही याद आता है। तो इस विधि से सहज निरंतर योगी बन सकते।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

जो भी बाप के स्थान है, चाहे गांव में है चाहे बड़े सोट में है, सेंटर्स पर है, लेकिन हर एक स्थान और साथियों में श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल आवश्यक है। बस एक अक्षर याद रखो, अगर कोई बददुआ देता भी है, लेने वाला कौन? क्या देने वाला लेने वाला एक होता है या दो? अगर कोई आपको कोई खराब चीज दे, आप क्या करेंगे? अपने पास रखेंगे या वापस करेंगे या फेंक देंगे? क्या अलमारी में संभाल के रखेंगे? तो दिल में संभाल के रखना।

0: веселее экшен. Аби.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: संस्कार नहीं बदले तब तक संसार

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा पूछते हैं, वो तो देख लिया बरकर देखा खेल, लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि आप लोगों ने सब खेल देखा बरकर देखा या अपने मूर्ति रहता है

0: falar desta ideia. Forne announcement karne lag jate to bab dada puchte aap brahmanon ne apna karya kiya aapko bhi alert hona chahiye आवश्यक होता है। इसमें बाप दादा मना नहीं करते, लेकिन जो ब्रह्मांड आत्माओं का विशेष कार्य है, जो और कोई सहयोग नहीं दे सकता, ऐसा सहयोग
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: देखा है कि क्रोध के सब्जेक्ट में बहुत कम पास ऐसी समझती है, शायद क्रोध कोई विकार नहीं है, ये शस्त्र है, विकार नहीं है। लेकिन क्रोध क्या नहीं तो आत्मा के लिए स्वरूप, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा अंदर में होती है, उसके से लाल पीला

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई भी पूछे परमात्मा कहाँ है, क्या कहेंगे? मेरे साथ पीछे वाले भी कहेंगे।

Isso, amiba.

Gel, gel diyor kapı kapı. Kapı kapı.

sé. Que sí.

खुश्क कर दे और बाबोश मिला दे कि तुम मेरे हो।

0: उसे कूट देते।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: तो झुपड़ी में रोड़ियां करने आ जाना।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अगर आपके दिल में छोटी छोटी बातें बड़ी नहीं होती है, होती छोटी है, लेकिन छोटी छोटी बातें इकट्ठी होके दिल तो भर जाती है ना, उनसे खाली तो नहीं रहती ना, तो दिल खाली नहीं तो दिल आराम कहाँ बैठेगा, कहाँ बैठने की जगह तो कि नहीं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अगर कोई व्यर्थ वा विकारी सोपत लगाओ का सोपत आता है तो अवश्य Yeah. قلبي في الرتن باتوں کا ورنن کرتے کرتے سنانے
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो
2: सत्यम शिवम सुंदरम
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: कुछ समय से चल रहा है कि अचानक होना है तो अचानक होना है, और अगर बहुत समय का अभ्यास नहीं हो अचानक के समय अभ्यास की आवश्यकता है ना। अभी अभी देखो, बाप दादा ने होमवर्क दिया 10 मिनट, टोटल 24 वाइट 10 मिनट का होमवर्क दिया, तो कई बच्चों को मुश्किल हो रहा है। तो सोचो, अगर 10 मिनट
1: समय
0: 10 मिनट हो तो अच्छे, ऐसा समय आएगा जो आप लोगों को खुद अपने लिए और विश्व के लिए भी किरणें देनी पड़ेंगी। इसीलिए बाप दादा छुट्टी देते हैं, जितना ज्यादा समय कर सको उतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी का बहुत समय भविष्य का आधार। ठीक है, मुश्किल लगता है न, कोई बात नहीं है, अभी तो कोई अड़चन नहीं। और बाप को सुनाया ये बहुत अच्छा की, क्योंकि मानो 10 मिनट बैठ नहीं सको, सोच में ही चला जाए तो 5 मिनट भी गए। इसीलिए बाप दादा की कम से कम 5 मिनट से कम नहीं करना, जितना भरा सको उतना भरा। ठीक है, स्पष्ट हुआ? Awesome.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अच्छा।

Sí.

Frisch.

0: பரம்தாம்.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आजकल की मुरली

0: टेंशन बढ़ा है, इसलिए अटेंशन बढ़ा है तो टेंशन संस्कारों का कम होता जाएगा। बाप दादा ने पहले भी कहा, जब भी टेंशन आवे ना ए लगा दो, बस ऐड कर दो ए, अटेंशन। चलना तो सबको आई, ये तो वायदा है ही पक्का, साथ चलेंगे साथ राज करेंगे।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: शॉट इकट्ठा इसीलिए किया जाता है कि एक दो के नजदीक होने के कारण एक दो को सहयोग देना सहज हो जाता है। तो ये भी सहयोगी बनना मेरी एरिया नहीं, सब मेरी आवश्यकता जहाँ है वो मेरा है, चाहे सोन नाम अलग अलग है, लेकिन जहाँ आवश्यकता है, आवश्यकता के समय सहयोग देना ये महापुण्य है। अगर अपना पुण्य का खाता जमा करना है तो सहयोगी बनो और सेवा को और चार चांद लगाओ। ये बाप दादा को अचल, तो इस संगठन को बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहेंगे ना, हाथ उठाओ, पढ़ाएंगे ना, सभी ने उठाया, हम सब एक है। ये तो सेवा के कारण कोई देख रेख हो सके, इसके कारण सोन बना है। बाकी एक ही है, एक ही रहेंगे, एक के है, एक के रहेंगे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: bene. Guru se chiama il te. Guarda. Tu curvar kiten. Fortan katten vishese. Isarup se. Curvar ko manao. Koi na koi. Vishesh vardhan amrit vele se apne buddhi mein immers rakho. Vardhan to anek hai lekin vishesh ek vardhan. अपने लिए बुद्धि में रख, चेक करो कि वरदान दिन में वरदान स्वरूप बन. वरदान को रिपीट नहीं करना है लेकिन वरदान स्वरूप बनना है. और चेक करते रहो तो आज कितना समय वरदान स्वरूप
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम.

जो सच्ची दिल, साफ दिल, बड़ी दिल, तीन बातें याद रखो, सच्ची दिल, साफ दिल, बड़ी दिल, तीनों बातें अगर कोई भी समय दुनिया के हालतों में भी, दुनिया की हालत कैसी भी हो, लेकिन तीन ही बातें हैं तो आप सबको दाल रोटी बाप दिलाएगा। दो चार सब्जी नहीं दिलाएगा, दाल रोटी। दाल रोटी खाओ, प्रभु के को न खाओ। फिर मुबारक के बताने बजाओ।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

बच्चे सोचते हैं 108 की माला में तो जो निमित बने हुए बच्चे हैं वो ही आएंगे, लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा है ये तो 108 के गायक भक्ति की माला का है, लेकिन अगर आप हर एक विजयी दाना

0: बनेंगे, कौन बनेगा? अच्छा, ओ बाप दादा, माला के अंदर माला बनाने शुरू कर देंगे। डबल फॉरेनर्स को पसंद है ना? पसंद है? विजय माला में लाना बाप का काम है, लेकिन आपका काम है विजय बनना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा, ऐसे बच्चे भी

शरद हीन के वायुमंडल में नहीं आकर ओडो को भी ओ मगोद सा मिलो बीच पे किसी किसी आत्माओं को पुरुषार्थ में थकावट अनुभव होती है, पाप दादा देख शरद पे तीवर रहने वाले औरों को भी शरद पे आगे बढ़ाओ, वायुमंडल दिनचर्या का ऐसे बनाओ जो सभी पुरुषार्थ के उमंग उत्साह से पढ़ते भी चले पढ़ाते भी चले क्योंकि एक दो के साथियों ना तो सबके प्रति चलो।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: संगम युग श्रेष्ठ है वो, ठीक है, हीरे तुल्य, लेकिन ये रहम दिल करने वाले होंगे, लेकिन साधारण
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

amiga. Yo te vendo ropa. Sleep.

Peace.

see. Whatchamacallop. Some again. Is it? Stop.

Ik zal zij spelen.

mannen. Exercise.